सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: बाबा, आपका चिंटू आ गया।
1: चिंटू बहुत बड़ा हुआ है पापा, तुझे कंधों पे कैसे उठाऊं?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 6 3 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट

0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों अब थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।

0: 89.6 पे
1: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं।
3: मेरा नाम प्रिया है।
2: प्रिया कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर से।
2: बताएं प्रिया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
3: पंजाबी सॉन्ग लगा दीजिए कोई सा भी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये पंजाबी सॉन्ग रेडियो डीएस में कौन सा करना?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर।
3: हेलो, नमस्ते सर।
2: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: चौधरी, निवेदन कर रहे हैं।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना सुपर हिट लाए हैं।
2: हाँ जी बताइए।
3: देखो नाना तेरी सुन के।
2: कौन सा था मेरा थोड़ा सा?
3: नाना तेरी सुन के प्यार हो गया।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। सर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। पीएस प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जेनिफा
0: है जी।
1: जेनिफा
0: जेनिफा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: नुसरत फतेह अली खान का।
0: नुसरत फतेह अली खान का कौन सा गाना है?
1: दिल को सुकून।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश। कैसा हूँ रेडियो डीएस में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनते रहिए द

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: गौरव शर्मा।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं शर्मा जी?
3: गंगापुर सिटी से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: बिजली।
2: सुना रहे हैं सर बिजली सॉन्ग, आपकी फरमाइश।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं।
1: मोहसिन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मोहसिन जी?
1: संजय कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं इतनी दूर चला जाऊंगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे हूँ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS,
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
4: बताएं आपका
5: कौन
4: कहां से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर सिटी।
4: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: अमन राजगिल।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर अमन राजगिल का ये सॉन्ग रेडियो DS में, खुल गया, धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं।
1: जी
0: अफसाना। अफसाना कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह।
0: मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह, बिल्कुल सुना रहे हैं अफसाना जी आपकी फरमाइश के। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: ये सॉन्ग रेडियो डीएस में खुल गया, धन्यवाद। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम मिथिलेश है।
0: मिथिलेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सर लाटा गली से बात कर रहा हूँ।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिलजीत दोसांझ का हासस वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं दिलजीत दोसांझ का ये सॉन्ग रेडियो डीएस में खुल गया, धन्यवाद।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
2: हेलो जी, नाम बताएं सर।
3: हेलो,
2: हाँ सर, नाम बताएं आपका।
3: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
2: हारून जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: फिल्म का नाम है विजय पात्र।
2: बताएं सर, कौन सा गाना?
3: आइए, आपका इंतजार है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: ममता।
2: ममता जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
3: हाँ
2: जी,

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: सचिन
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नशे कॉलोनी गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: दिल ने ये कहा जिससे हम क्या करें।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: ये नाम बताएं।
1: शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: किया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कैसे हो? हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
2: दिव्या।
0: दिव्या जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सिंगापुर से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: तेरी मास्टर।

0: जी नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं।
0: हाँ ठंडीराम गुजरा बोल रहा हूँ सर, गाँव बजरका से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: एक रेस में पागे की घंटार के शब्द।
1: हाँ जी,
0: एक रेस में पागे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ डोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 पे रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
6: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर अब 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
2: साबिर बोल रहा हूँ गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: गाना है वो देखो जला घर किसी का।
1: वो देखो जला घर किसी का,
2: जी हाँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: हेलो, आपका नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम मैं बताना हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैं गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: मैं चले।
1: ओके, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा ना।
0: Ha ha ha.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: तन्नु।
2: कहाँ से बात कर रही?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: जलते दिए।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको।

0: नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: परम आदरणीय पलक दीदी सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ दीदी। आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बंटवारा, तुम्हारो कौन लागे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
1: नमस्ते सर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: असला सॉन्ग।
0: कौन सा?
1: असला सॉन्ग।
0: असला

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: माही नूर,
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: छोरी गोल मटल सॉन्ग।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम ऋषभ शर्मा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं रूट सॉन्ग सुनना चाहूँगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश को।

0: हिमांशु मीना
1: से बात कर रहे हो
0: क्या?
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: तेरे जैसा
1: यार सुना रहे हैं।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो आरवी,
0: जी, नाम क्या है आपको? कहाँ
1: गंगापुर
0: से बात कर रहे हो? कौन
1: से।
0: सा गाना सुनना चाहोगी?
1: वो कौनिया,

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

मेरे गली तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देखकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देखकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,